वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

9:51 on a Tuesday. आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. Wrapping up this hour with this warm hug from the film Guide. लता जी, पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे. इदरीस एंड मामिन हैकनी, यशवी, सायरा, थैंक यू सो मच. रहिएगा मेरे साथ पूरे 12 बजे तक. Massive thanks to Ajay for yesterday. It's fabulous to be back in the studio. Let me just add. Have a beautiful Tuesday. Good morning.

0: दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। मिस्टर खान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लता जी की तरह इतनी सुरीली आवाज, इतनी मधुर आवाज न पहले कभी आई न फिर कभी आएगी। आप कहते हैं कि श्रेया कम्स क्लोज, लेकिन रोलेक्स तो रोलेक्स है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। You know what? I was trying to remember the story of Veer Zara. I remember loving it at the time, but I cannot recall any of the details. None. I know that it is a love story that stretches across the border. Shah Rukh Khan is a fighter pilot. Preeti Zinta belongs to Pakistani nobility, something like that, right? Where does Rani Mukherjee come into the picture? What happens in the story before or after this song? I must watch it one day soon.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: Hello UK, Walo, Big Boss is back. Aur is baar ghar walon ko milega ek nahi two chance. Big Boss only on Colors.
3: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 p.m. on Colors TV.
0: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. अरिजीत सिंह, निकिता गांधी, टेकन फ्रॉम भूत बंगला, तू ही दिस द। मिस्टर खान, यू फाइनली सॉ बटवारा 1947 ऑन द बिग स्क्रीन। गो ऑन देन, गिव अस योर रिव्यू, बी एज ब्रूटल एज यू विश टू बी, लेट अस नो। गुड मॉर्निंग।

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: Hello UK Gauru, Big Boss is back. Aur is baar ghar walon ko milega ek nahi two chance. Big Boss only on Colors.
2: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM on Colors TV.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
4: Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर. यू नो व्हाट, यस्टरडे वी वर ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम वानीज कैश एंड कैरी. वी वर देयर फॉर टिल्डा एंड देयर वर डांसर्स, देयर वाज फूड टेस्टिंग, देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन. एंड व्हेन दिस सॉन्ग प्लेड ऑन द स्टीरियो इन दैट मैसिव स्पेस यस्टरडे, आई रियलाइज्ड वंस अगेन व्हाई दिस बिकेम द डांस एंथम ऑफ डिसेंबर 2025 एंड फॉर ऑल द मंथ्स दैट फॉलोड. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? दिस

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बह।